दूसरी बड़ी खबर रामायण के बारे में आ रही है, रणबीर कपूर और यश की मेगा बजट फिल्म रामायण पार्ट वन को लेकर है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट का फाइनली ऐलान हो गया है। मेकर्स ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए इसका एक नया इंग्लिश टीजर जारी करते हुए घोषणा की है कि यह फिल्म दिवाली से ठीक दो दिन पहले यानी 6 नवंबर 2026 को दुनिया

0: बाहर के थिएटर में रिलीज होगी। रणबीर कपूर के राम वाले लुक को देखकर फैंस इस समय काफी एक्साइटेड है। वही भाईजान के परिवार से खबर है कि सोहेल खान भी पूरे 10 साल के बाद बतौर डायरेक्टर वापसी कर रहे हैं और वे संजय दत्त व आयुष शर्मा के साथ एक नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल कर रहे हैं जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM Monday to Sunday। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो

0: है रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। सिनेमा के बाद अब रुख करते हैं सीधे खेल के मैदान की तरफ, जहां हमारे लोकल कॉलेज फुटबॉल को लेकर आज सुबह एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना UNC के हेड कोच बिल बेलचिक ने आज पहली बार मीडिया से बात करते हुए बताया कि फुटबॉल प्रोग्राम के जनरल मैनेजर माइकल लोम्बार्डी के खिलाफ चल रही अंदरूनी जांच के बाद टीम के डिफेंसिव और जो कोऑर्डिनेटर स्टीव बेलोचिक अचानक चिकित्सीय दैट इज मेडिकल लीव पर चले गए। इससे टीम की प्री सीजन तैयारियां पर थोड़ा असर पड़ सकता है। वहीं ड्यूक यूनिवर्सिटी के हेड कोच मैनी डियाज ने भी डरम में अपनी ब्लू डेविल्स टीम के पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद टीम की ज़बरदस्त तैयारियों को लेकर मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: रात के ठीक 9 बजने आ रहे हैं, बाहर हवाएं चल रही है और अब वक्त हो गया है हमारे शो के सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, यानी आज की एक बिल्कुल नई और बेहद रहस्यमयी कहानी का सफर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको किसी अदालत की नहीं बल्कि नॉर्थ कैरोलिना की समुद्री इतिहास की एक ऐसी सच्ची और अनसुलझी पहेली सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिटरली ये ऐसी कहानी है, तो एंजॉय करते हैं ये कहानी। और कैसे चल रही है आप सबकी ये शाम? मेरा तो शो सैटरडे संडे भी आता है, तो मेरा कोई वीकेंड नहीं है बॉस, लेकिन मेरे सारे लिसनर एंजॉय करें ये मैं चाहता हूँ। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना एंड बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: तो ये कहानी है कैरोल एडीरिंग नाम के एक विशाल समुद्री जहाज की। बात है साल 1921 की, जब ये आलीशान कमर्शियल जहाज ब्राजील से कोयला लेकर वापस अमेरिका लौट रहा था। नॉर्थ कैरोलिना के तट के पास एक बहुत ही खतरनाक समुद्री इलाका है जिसे डायमंड शॉल्स कहा जाता है। इसे पूरी दुनिया में ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक यानी जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस इलाके में एक बड़ा तूफान आया। 31 जनवरी 1921 की सुबह कैप हैटरस के कोस्ट गार्ड ने देखा कि ये विशाल जहाज किनारे के पास रेंत में फंसा हुआ है। कोस्ट गार्ड की टीमें तुरंत लाइफ बोट्स लेकर जहाज की तरफ बढ़ी, लेकिन समुद्र में लहरें इतनी तेज हो गई थी कि वे 3 दिन तक जहाज के करीब नहीं पहुंच पाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: जब फरवरी की शुरुआत में मौसम साफ हुआ और रेस्क्यू टीमें जहाज के डेक पर उतरी तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। जहाज पूरी तरह सुरक्षित था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जहाज के किचन में रात का खाना टेबल पर था, मानो लोग अभी अभी खाना खाने बैठने ही वाले थे। लेकिन पूरे जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। कप्तान से लेकर चालक दल के सभी 11 सदस्य गायब थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज के सारे लाइफ बोट्स, नेविगेशन के नक्शे, जहाज की लॉग बुक और दोनों लंगर गायब थे। लेकिन चालक दल का सारा निजी सामान और कीमती चीजें वही सुरक्षित रखी थी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: अमेरिकी सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों FBI और कोस्ट गार्ड को काम पर लगाया। महीनों तक जांच चली, कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि जहाज पर विद्रोह हुआ था और चालक दल कप्तान को मारकर भाग गया। कुछ ने कहा कि उस दौर के समुद्री डाकुओं ने जहाज को लूट लिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और एलियंस से भी जोड़कर देखा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि अगर डाकू आए थे या विद्रोह हुआ था तो जहाज का कीमती सामान क्यों नहीं लूटा गया, और अगर वे लाइफ बोट से भागे थे तो बाद में समुद्र में एक भी लाइफ बोट या किसी भी इंसान का कुछ मिला क्यों नहीं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

मतलब थोड़ी हॉरर टाइप की ये स्टोरी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड टेंशन नहीं लेना है। मतलब ये स्टोरी जो है यार, ये स्टोरी के बहुत अलग फ़ैन रहते हैं। कुछ हॉरर स्टोरी, कुछ मिस्टीरियस स्टोरी अगर मैं सुनाता हूँ, मुझे लिसनर्स भी कहते हैं कि ऐसा कुछ अगर होता है, और मुझे लगता है कि इवनिंग के टाइम में थोड़ा बहुत ये ऐसा होना भी चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने भी अगर कुछ थ्योरी पढ़ी है इस कहानी से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड कैसे चल रही है आपकी शाम? अभी वक्त तो हो चुका है, सब लोग मोस्टली घर पहुंच गए होंगे, एंड डिनर एंजॉय कर रहे होंगे, आपके लव वंस के साथ आप डिनर कर रहे होंगे, एंड मौसम तो यार काफ़ी अच्छा हो रखा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: कहानी को कहानी तक ही सीमित रखना चाहिए, मतलब उसमें अटके नहीं रहना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बस उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का एक पर्पज़ रहता है मेरा, और कुछ अलग भी होना चाहिए। दैट्स वाई ये कहानी मैंने आपको बताई। एंड बाहर निकलना है ना, मतलब कहानी से आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा सोचते हैं तो बस सोचते ही रह जाते हैं। तो अभी कुछ शायरी बनती है यार, मूड को थोड़ा चेंज करते हैं। समंदर के इस गहरे और अनसुलझे रहस्य के बाद वक्त हो गया है कुछ शेर सुनाने का, कुछ नए अल्फाज मेरे फ्रेंड्स को सुनाने का वक्त हो चुका है। तो बिल्कुल लेटेस्ट शेर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एंजॉय करना है ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: पास में अटके तो नहीं रहना है, लेकिन पास से हमें सीखना है कि जो भी गलतियां हमने पास में करी थी वो फ्यूचर एंड प्रेजेंट में ना हो। दैट्स इट। पास तो यार सबका होता है और पास में गलतियां सबसे होती है यार, है ना। इंसान है, इंसानों से गलतियां तो होती रहेंगी। तो अगला शेर थोड़ा, आज मौसम बन चुका है तो अगला शेर भी सुनाना चाहूँगा। दुनिया के इस दौड़ में हम सुकून ढूंढना भूल गए, है ना। दौड़ ही है एक प्रकार की देखी जाए तो। दुनिया के इस दौड़ में हम सुकून ढूंढना भूल गए, रिश्तों के इस ताने बाने में खुद से मिलना ही भूल गए। कितनी रियलिटी है। जरा ठहरी है आरटीपी की इस ठंडी और खामोश शाम में, क्योंकि जो सुकून अपनों के पास है उसे हम दुनिया में ढूंढना भूल गए। असली सुकून अपने आप के साथ, अपने कंपनी के साथ है। थोड़ा अपने साथ भी वक्त बिताया करो और एंजॉय किया करो यार, मुस्कुराया करो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: वक्त के साथ बदल जाना ही जिंदगी की रीत है मेरे यार। वक्त के साथ बदल जाना ही जिंदगी की रीत है मेरे यार। पुरानी बातों को पकड़ कर बैठोगे तो सफर भारी हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, मतलब कोई कोई लोग ना पास में अटके रहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि पुरानी बातों को पकड़ कर बैठोगे तो सफ़र भारी हो जाएगा। हर शाम एक नई कहानी और नया एहसास लेकर आती है, सही है, उम्मीद भी लेकर आती है ना। हर शाम एक नई कहानी और नया एहसास लेकर आती है, मतलब आप बस हंसो, गले लगाओ इसे, तो कल का सवेरा और भी प्यारा हो जाएगा। सही बात है, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि पास में ही अटके रहते हैं, तो पास में अटके रहना नहीं है यार, चलने का नाम ही तो जिंदगी है। एंजॉय करते हैं अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना गाना था, वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। कैसे चल रही है आप सब लोगों की शाम? मोस्टली सब लोग तो घर पर पहुंच चुके हैं, डिनर कर रहे हैं अपने लवेबल पर्सन के साथ एंड एंजॉय कर रहे हैं रेडियो नायरा पर हमारा ये शो भी। थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट को इतना सारा लव देने के लिए। एंड मैं तो यार मतलब हमेशा ही कहता हूँ कि आपके साथ बातें करते करते, कहानियाँ सुनाते सुनाते वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अगेन 7 से 10 का ये वक्त तो खत्म होने पर आ गया। कल मिलूंगा आप सभी से इसी वक्त इसी शो पर। एंड तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि मुस्कुराने की कोई कीमत नहीं होती है। अगर आप मुस्कुराओगे तो रिश्तेदार जलते ही रहेंगे। कल मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल

दिखता है पैसा, तुम्हें नहीं दिखती है टेंशन। तुम्हें दिखते हैं बॉडीगार्ड, पर तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों है मेरे साथ। तुम्हें दिखते हैं मेरे दिन, तुम्हें नहीं दिखती है मेरी रात।

पे चिल्लाना तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से, देखो गौर से, देखो गौर से, करो थोड़ा फोकस। ऊपर से ही दिखता है सब तुमको, बस देखो ध्यान से है।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1400

CMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: सदियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में, हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: में हमारा।
1: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
2: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3838.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड मैं हूँ आपका होस्ट वैन और हमारे शो का नाम है दिल से देसी विद वैन. यू कैन ट्यून इन ऑन 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम और 1490 एएम. या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन टुडे अबाउट अवर एरिया और एनीथिंग लोकल हैपनिंग दैट यू वांट टू शेयर आउट एट 919-999-8595. सो दो चीज़ें हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इधर यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एन ऐप विच इज़ अ रेडियो नायरा ऐप एंड यू कैन लिसन टू नॉन स्टॉप सॉन्ग्स. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू लिसन टू एनी ऑफ द म्यूजिक और गाने और यू नो हैव सम गुड क्वालिटी टाइम, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एन ऐप. सो तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक सबके दिल को छू लेने वाला है. वो है वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट मनी, पैसा, राइट. लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, राइट. लाइक ये सवाल है कि अगर आपके पास पैसा है अभी तो, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यू नो आप क्या सोच रहे हैं, राइट. व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. सो दिस इज़ अबाउट यू नो हमारा जो एक पुराना पैराडॉक्स है कि कैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या बोला, फिर ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलते थे और अभी नवी जनरेशन क्या सोच रही है, वेयर डू दे वांट टू पुट देयर मनी, राइट. तो इसी के बारे में हम शो करेंगे, राइट. कि भाई यू नो ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे सोना ले लो वो सबसे बेस्ट है, जमीन ले लो, फिर पेरेंट्स कहते हैं दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर स्टॉक्स, इक्विटीज, यू नो. सो वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज. कि भाई इफ यू आर going to invest, looking to invest, or again, I'm not a financial advisor or anything, I'm just trying to poke around and see कि क्या चल रहा है, right, लोगों के दिमाग में, लोगों की सोच में. क्योंकि ये सच है कि हमारी देसी कम्युनिटी में एक सवाल you know सिर्फ फाइनेंस का नहीं है, ये एक you know generational war है, right? एक तरीके से देखा जाए तो, कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा सोना ले लो, सोना कभी you know लॉस में नहीं जाता. आपके बच्चे कहते हैं लाइक, और यू नो किड्स माइट बी सेइंग यू नो लेट्स इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, गोल्ड इज़ लाइक अ डेड एसेट. तो आज हम यही देखेंगे कि राइट कि भाई असली सच्चाई क्या है, लाइक व्हाट आर द नंबर्स सेइंग एंड व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ बैलेंसिंग द एक्ट. एंड अगेन कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं है यहाँ पे और कोई यू नो आई एम नॉट गोना गिव एनी ट्यूटोरियल्स और एनीथिंग, बट हम फैक्ट्स पे फिगर्स पे बात करेंगे. विल टॉक अबाउट लाइक भाई यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर. क्योंकि एवरीबॉडी इज़ इनटू कि भाई पैसा है तो कहाँ डाले, और या तो यू नो व्हाटएवर द सेविंग्स आर लाइक हाउ शुड यू गो अबाउट इट. तो एक छोटा सा टीज़र, राइट. लेकिन पिछले 20 सालों में गोल्ड और सोना, गोल्ड बेसिकली या तो सोना या तो S&P 500 लगभग नेक टू नेक चल रहे हैं, राइट. इफ़ यू आई मीन बहुत लोगों को लगता है कि यार सोना इज़ लाइक इट्स वेरी इमोशनल थिंग, या तो इसके ऊपर बहुत सारा यू नो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वॉर होती है, ऑयल है, सब कुछ ये सब इन चीज़ों के साथ में झगड़ा हुआ है. बट कुछ एनालिसिस में थोड़े गोल के भी रखूँगा सामने कि यू विल सी कि लाइक यू नो व्हाट इज़ द रियलिटी, राइट. और आप प्रीटी मच शॉक्ड हो जाएंगे अगर आप नंबर्स देखेंगे. तो मुझे भी नहीं पता था इस बारे में, बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट आई वाज लाइक यू नो व्हाई नॉट टॉक अबाउट दिस. तो यू नो विल कीप सम फोकस ऑन द डेटा एंड यू विल सी अगले सेगमेंट में, जैसे हम शुरू करते हैं शो को, कि क्या सच्चाई है, व्हाट आर द नंबर्स सेइंग, राइट. कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हम पिछले 2-3-4-5 साल देखते हैं, बट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स ओवरऑल द पिक्चर लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, राइट. एंड ऑफ कोर्स यू नो वी'ल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन द शो टुडे. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भाई यू नो हाउ शुड यू गो अबाउट इट, राइट. कि भाई एक ट्रेंड चलता है कि भाई जैसे आप स्टॉक मार्केट्स में भी देखते होंगे कि अरे .com बबल है, फिर ये ले लो, फिर हाउसिंग में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, अभी AI का नवा जमाना है तो सब AI में पैसा डाल रहे हैं. सो व्हाट डू वी गो अबाउट इट, राइट. लाइक कि भाई इन सब के बीच में पहले जो पीरियड चल रहा था वो चल रहा था कि भाई प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड, हाउसिंग, ये एक डेड एसेट कभी नहीं हो सकता. एंड देन उसके पहले तो ऑलवेज एक ही चीज़ होता था कि भाई गोल्ड, ये कहाँ से आया है हमारी कम्युनिटी के अंदर, व्हाई आर वी द हाईएस्ट बायर्स ऑफ गोल्ड आउट ऑफ ऑल द डायस्पोरा आउट देयर. तो इसी के बारे में आज बात करेंगे थोड़ी बहुत. उसके पहले थोड़े गाने वाने हो जाए, एंड देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक.

तो जी हाँ दोस्तों, यू वी आर बैक ऑन लाइव ऑन दिल से देसी शो विद मैन। यू आर लिस्निंग टू रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM और 4

1490 AM. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन. आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, सोना वर्सेस स्टॉक वर्सेस प्रॉपर्टीज वर्सेस घर, क्या लेना चाहिए, राइट? एंड अगेन, जस्ट एज अ फुल डिस्क्लेमर, आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू टू बाय समथिंग, बट यू नो, जस्ट वांट टू पुट आउट सम फैक्ट्स कि भाई देखते हैं कि क्या सच है, राइट, कि नंबर्स क्या कह रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, यू नो, सबसे पहले सोने से, राइट, बिकॉज दैट इज़ द वन विच इज़ इन मोस्ट इन डिबेट कि भाई, क्योंकि हमारे घर में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल अटैचमेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, कि शादी हो गया, लाइक त्यौहार हो गया, धनतेरस एंड ऑल दीज थिंग्स, कोई बेटी की शादी है, लड़के की शादी है, यू बाय दीज थिंग एनी ओकेजन्स. लेकिन ये सिर्फ सेंटिमेंट है या जेन्युइनली एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है? दैट इज वॉट वी वॉन्ट लुक एट. सो लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स, राइट, के ओवर पास्ट 20 ईयर्स, लाइक वन वी लुक एट द इन्वेस्टमेंट, इज ऑलवेज बीन टारगेटेड बैक ऑन लाइक यू नो लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है. तो इफ यू लुक एट पास्ट 20 ईयर्स, गोल्ड एंड S&P 500, विच इज लाइक अ बेंच मार्क जहां पर टॉप 500 कंपनीज US की होती है, दे हैव डिलीवर्ड स्ट्राइकिंगली वेरी क्लोज रिटर्न, राइट. सो वन widely analysis puts gold roughly at 433% versus about 358% for S&P. So they're very close, right? In fact, gold jada hai. With gold's edge coming mainly from like 2008 financial crisis, recent inflation driven rallies, wars. So I mean, if you look at it, right, ki bhai 433% gold upar hai versus stocks and investments mein. Stocks and investments mein you get dividends and all these things as well. There's always a risk factor there, liquidity, taxation, all these things kind of get involved in there as well, right? Long-term capital gains tax, short-term tax, daily trading and all of that, right? Bahut heavy risk hai. Zoom into the last 10 years, right? Though the picture flips, like last 10 saal mein dekhte hain, toh puri picture flip ho jati hai. S&P 500 outperformed from the gold. So roughly 175% versus 100% in that same analysis, right? So reflecting the strength of recent stock, right? Kyunki bull market chal raha hai. You know, the economy is growing and, you know, there's a lot of factors getting involved. Chips ki rally, AIs ki rallies, ye sab kuch chal raha hai, right? So 10 saal mein देखे तो S&P 500 ऊपर है, मगर अगर 20 साल देखते हैं तो गोल्ड ऊपर है. 2025 alone में like S&P 500 delivered about 17.78% results, right? While gold finished of the year roughly at 62.22%. And the remainder of that year to a reminder, right? Like a year to year. So like, you know, 2 years really compared together. So I'll share my experience. Like 2 saal pehle ki baat hai. I was just looking at the app on Costco. Tab ek wo ounce ka bar tha. And I literally went even, I drove to Costco because I wanted to get wo queen wala lene ke liye. And it was about like 1900 something. It was fluctuating 1950, 70, aise kuch. But when I went to the store, वो मुझे नहीं मिला, वो कुछ elephant वाला मिला था, I didn't buy it. But fast forward, मैंने next year देखा, तो it is $4,000. The same चीज went double the price, like 100% return. और उसके भी ऊपर चले गया था बाद में तो. I think there is like a gold rush going on. There are so many videos I have seen के हमारी community में. I was watching one of the videos in Texas के वो gold bars आते हैं Tuesdays को उनके पास में. And within first 30 minutes, they are gone. People are paying cash and taking it. On wo jo lady bata rahi thi, it was like, she was saying like, she doesn't understand, but she was saying ke, what is it with the madness with the Indian diaspora people here? Like, as soon as this is here, in 30 minutes, they're gone. And like 95% of people who are buying are like Indians. So, itna fast wo ja raha tha. And I understand the fact ki bhai wo low, fir wo Costco se, you get it the cheapest, you get cash back, tax, whatever you save and all of that stuff. And then you sell it and whatnot. So, you crack out couple money out of that. But still, इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव में गोल्ड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक एट. लास्ट लुकिंग बैक एट 30 ईयर्स, राइट, इफ यू लुक एट इट, S&P 500 हैज एवरेज अबाउट 10.2% एनुअली वर्सेज रफली गोल्ड इज एट 7.5%. सो
for pure long-term compounding, stocks are historically having the edge, but Sona bhi itna kharab nahi hai, if you look at it, right? They're very close, like it's not that much of a huge different margin between both of them. So yeah, interesting hai, if you look at it, right? So depending upon, you know, which 10, 20, 30 year window mein aap agar dekhte hain usko, to अलग अलग विनर दिखते हैं आपको, एक ही विनर नहीं होता, राइट? तो 30 साल में देखे तो गोल्ड इज़ द विनर, 20 साल में देखे तो स्टॉक इज़ द विनर, दे आर वेरी क्लोज, एंड 10 साल में देखे तो दे आर यू नो स्टॉक इज़ इवेंचुअली अ विनर, राइट? देखा जाए तो फिर ये इमोशनल अटैचमेंट्स होने के साथ में है या क्या है, लाइक वाई आर वी स्टिल, अगर एक क्लियर है जो होता कि भाई यू नो इट्स नॉट इवन वर्थ इट, तो लोग खरीदते भी नहीं, राइट? मगर फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट है गोल्ड के साथ में. तो सिंपल, लाइक यू नो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे बैंक नहीं होते थे, इफ यू लुक एट इट, लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो कोई रिलायबल बैंक नहीं था, स्टॉक मार्केट लोगों को समझ में नहीं आता था, ट्रेडिंग वॉज नॉट ईजी इन इंडिया बैक इन द डेज, कि भाई हर बंदा जाके स्टॉक खरीद ले, कि भाई यू नो आज के टाइम पे जो होता है, बैक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज देयर, वो डीमैट अकाउंट खोलो, फिर ब्रोकर को फ़ोन करो, फिर वो लेगा आपके लिए स्टॉक्स, फिर आप, इट वॉज नॉट लाइक अ स्प्लिट सेकेंड बाय एंड सेल, ये चीज़ें जो चलती थी. अभी तो कैसा, बटन दबाया तो यू बॉर इट, बटन दबाया तो यू सोल्ड इट, यू हैव अ कंट्रोल इन योर हैंड वर्सेज द एजेंट, वो मिडल मैन खत्म हो गया, और बैक इन द डेज वॉज अ मिडल मैन उस टाइम पे. तो सोना एक ऐसी चीज थी जो यू नो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, आपके हाथ में है, आपकी इमरजेंसी है, आपकी पूंजी है, आपकी सिक्योरिटी नेट है. तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात थी, राइट? बैक इन द डेज की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी ये, इट वॉज मोर ऑफ अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, भाई कल को खराब दिन होंगे तो यू हैव सोना, यू हैव द गोल्ड विथ यू, यू वांट टू सेल, राइट? तो ये चीज होती थी इसके बीच में. If you look at it, like if you talk about your dadi, nani and your grandparents, sona was more equals to like safety, aapki izzat, you know, emergency fund, kabhi nahi bechna hai isko kind of, you know, mindset. If you look at parents, like, you know, boomers, Gen X, sona plus jameen aa gaya, right? Real assets, stocks. ये खरीदो, लाइक रियल एसेट्स खरीदो, स्टॉक्स तो एक जुआ है, इसमें मत जाना, डूब जाओगे, पैसा लगाया तो इट्स अ गैम्बलिंग, लाइक स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह देखते थे. और आज की जनरेशन में इट इज़ मोर अबाउट, इफ़ यू लुक एट इट, 401k, इंडेक्स फंड्स, क्रिप्टो, और गोल्ड को डेड मनी बोलते हैं, लाइक कहते हैं कि लाइक यू नो ये एक ले लिया, एक लेके आप ये मेटल को फंस जाओगे. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो इनटू सिल्वर नाउडेज, इफ यू लुक एट इट, बिकॉज सिल्वर की भी बहुत हाई डिमांड, देयर इज वेरी हाई, लाइक एक मेटल्स का पूरा एक ट्रेडिंग होता है एवरी डे, इफ यू लुक एट इट, स्पेशल प्रेशियस मेटल्स के बारे में. तो कहते हैं कि लाइक यू नो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता सोना, तो यंग जनरेशन इज गेटिंग आउट ऑफ गोल्ड, दे आर नॉट इनटू बाइंग गोल्ड एंड ऑल ऑफ दैट. तो लेकिन दोनों गलत नहीं है, राइट? इफ़ यू लुक एट इट, सच में जो बेस्ट चीज़ है वो बीच में है, राइट? इट्स सोना लिक्विड इमोशनल, लाइक एक लिक्विड एसेट है, एक इमोशनल वैल्यू रखता है, और जिसमें यू नो जैसे हम देखते हैं, लाइक कई विंडोज़ में रिटर्न भी अच्छे आते हैं, कई विंडोज़ में रिटर्न आपको आज लिया तो ऐसा नहीं है कि भाई कल आपको पैसा मिल जाएगा. लेकिन सिर्फ सोना रखना भी रिस्की है, राइट? इफ़ यू लुक एट इट, इट हैज़ टू बी डाइवर्सिफाइड. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक कन्फ्यूज यू और यू नो पुट इट आउट, आई एम जस्ट सिंपली पुटिंग द नंबर्स आउट एंड फैक्ट्स आउट, कि भाई गोल्ड हैज़ नॉट बिकम डेड, इट इज़ स्टिल अ वैल्यूएबल यू नो एसेट, बट द जनरेशन माइंड सेट हैज़ चेंज्ड. नंबर वन, ऐसा नहीं है कि भाई यू नो एवरीथिंग यू नीड टू जस्ट डू इज जस्ट गोल्ड. So diversification is important part in this, and then just don't, you know, it's not a good wise thing to buy gold in a rat race. जैसे वो ऊपर जा रहा था तो सब लोगों ने you know दौड़ दौड़ के ले लिया, अब वो बैठे हैं and they are like you know हमने 5000 का 4000 का ounce ले लिया, now it's going down because you know the social factors are different, there's wars and other things happening, but I don't think there's anything to panic. If you wait quite long, if you wait for some time, any investments will bounce back. It's not ke bhai ke duniya se sona khatam ho jane wala hai, nobody's going to buy gold. It's just that you got to wait about it, and
एक स्टबर्नेस भी अच्छी नहीं है इसके लिए कि भाई सोना ही लेना है, राइट? सो यू जस्ट हैव टू ओपन अप योर माइंड अ लिटिल बिट एंड स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग, एंड ऑल्सो द जनरेशन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट राउट. सो इफ योर न्यू जनरेशन इज नॉट बाइंग गोल्ड, दैट्स जस्ट बिकॉज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग नाउ. इट्स नॉट अबाउट कि भाई वही पुरानी चीज़ों में हमें स्टक रहना है. तो चलिए गाना वाना सुनिए, देन विल कम बैक, आई पुट सम मोर फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई स्टॉक्स वर्सेस सोना, राइट? लाइक उसका क्या कंपेरिजन है. तो चलिए थोड़े गाने वाने हो जाए, देन आई बी राइट आफ्टर द ब्रेक.

तो जी हाँ दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स। मैं तो गाने एंजॉय कर रहा हूँ एंड आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग एज वेल। अगर आपकी कोई गाने की भी कभी कोई फरमाइश हो, यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन प्रॉब्ली चेंज द प्ले लिस्ट। एंड आई मैं थोड़ा बहुत तो सीख गया हूँ अभी इस चीज़ को संभालना। होपफुली यू नो लास्ट टाइम आई कैन आई होप आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक लास्ट टाइम, थोड़ा बहुत कुछ आई थिंक माइक की कुछ इश्यू थी, सो मे बी दैट कुड बी द केस। बट एनी वेज, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन और हमारा शो हर सैटरडे को होता है। वी come on live at 12 o'clock all the way till 2 o'clock. We bring interesting topics. ऐसे ही कुछ बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं और कुछ interesting topics पे बात होती है जिससे हम कुछ सीखने को मिले। If you want to call and share some of your insights or any of these topics or if you have any topics in mind, please मुझे reach out कीजिए या Radio Naira पे reach out कीजिए। You can also call me today. The lines are open at 919-999-8595. Or you can also tune into 99.9 FM HD4, 101.9 FM or 1490 AM. तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स, पैसा। Now I want to take you to Sona versus the stocks, gold versus the stocks. And थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, राइट, कि भाई इसको थोड़ा इंट्रैक्टिव बनाते हैं। तो यू नो गेस यू नो हु इज़ द विनर, राइट, बिटवीन द स्टॉक्स एंड द गोल्ड। मैं आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दूंगा एंड यू कैन गेस, राइट, कि आंसर क्या है, राइट, इनके पीछे। तो लेट्स आई थिंक आई हैव लाइक अबाउट 3-4 ऑफ देम, तो चलिए देखते हैं। तो पहले पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसने दिया, राइट, तो गोल्ड है या S&P 500 है, लाइक बेसिक बेंचमार्क फॉर द स्टॉक मार्केट, राइट। इफ़ यू लुक एट द आंसर फॉर दिस, ये बहुत ही क्लोज रेस है। तो 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, बाय द वे दिस 2 decades। तो अगर आपने कभी सोना बाय किया है एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इन अ माइंड सेट कि आज आपने ले लिया तो 20 साल बाद उसका क्या होगा, राइट, अगेन नोबडी नोज द आंसर फॉर इट, बट ट्रेडिशनली ये चलते आ रहा है, तो यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ यू नो अंदाजा लग जाता है कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, होपफुली एवरीथिंग गोज वेल, राइट। तो एक वाइडली साइटेड एनालिसिस के मुताबिक लाइक गोल्ड ने रफली 433% रिटर्न दिया है और S&P 500 ने 358% रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट लाइक 80% लेस, राइट। सो गोल्ड थोड़ा आगे है इस रेस में और मोस्टली यू नो आपको पता होगा यहाँ पे, इफ़ यू नो अबाउट इट, 2008 का क्रैश, रीसेंट इन्फ्लेशन, बहुत सारे इसके पीछे डायनामिक्स होते हैं, राइट, एक सिचुएशंस होती हैं। लेकिन पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही फ्लिप है, जैसे मैंने पहले बताया, राइट, S&P 500 आगे निकल जाता है, गोल्ड थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये रीसेंट चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर है। लेट्स लुक एट अनदर फैक्ट, तो लाइक इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड का ओनरशिप रेट क्या है। तो ओवरऑल US के एशियन अमेरिकन से ज़्यादा है या कम है, राइट। तो अगर आप पूरी एशियन पॉपुलेशन ले लें और ओवरऑल इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन ले लें तो उसको कंपेयर करें हाउस होल्ड ओनरशिप के रेट में, तो आंसर जो देखोगे इट इज़ वेरी शॉकिंग, लाइक इट इज़ एक्चुअली इक्वल, बहुत ही बराबर रेस है ये। तो इंडियन हेरिट हाउस होल्ड में होम ओनरशिप लगभग 62% है, मगर 62% जो पॉपुलर, मतलब 100 में से 62% लोग हमारे यू नो डायस्पोरा में होम ओन करते हैं, दे ओन द हाउस, राइट। जो ओवरऑल अगर आप देखिए एशियन अमेरिकन से तो वो बिल्कुल बराबर है, राइट, तो इट इज़ नेक टू नेक। एंड अगेन अगर आप दूसरी चीज़ को देखें तो और भी इंटरेस्टिंग बात है कि इमिग्रेंट हेरिट जो इंडियन हाउस होल्ड है, जो लाइक अभी इमिग्रेशन स्टेटस में है और इमिग्रेंट हैं वो अभी इस टाइम पे, उनका रेट 63% है। एंड देन US बोर्न इंडियन हाउस होल्ड्स है, तो जैसे समझ लीजिए मेरे बच्चे हो गए या आपके कोई किड्स है, अगर आपकी कोई फैमिली यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप ग्रो हुई तो वो 60% है। इट इज़ वेरी नेक टू नेक, थोड़ा सा ज़्यादा है 63 versus 60, बट स्टिल वी आर स्टिल इन टू बाइंग द हाउस, वी बिलीव इन के अपने खुद की एक घर छत होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम ऑल्सो यू नो अ लिटिल बिट ऑफ अ माइंड सेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड थिंग्स के, राइट, कि आज के टाइम पे तो थोड़ा बहुत शिफ्ट भी हुआ है बिकॉज पीपल वॉन्ट फ्रीडम, दे डोंट वॉन्ट गेट jacked up into buying the house and get stuck with it, but still the number stays the same. 63% log wo mein overall bhi agar hum dekhen to it is a pretty high number, above 50% is like a pretty decent number ke hum home ownership mein abhi bhi believe karte hain, abhi bhi hamare ghar aur properties aur investments mein this is one of the biggest thing what we're looking for.
इंडियन इमिग्रेंट हाउसहोल्ड की मीडियन इनकम ज़्यादा है यूएस बोर्न अमेरिकन इंडियन हाउसहोल्ड की के इक्वल है, राइट? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो लाइक इंडियन इमिग्रेंट हाउसहोल्ड की मीडियन इनकम अगर आप कंपेयर कर रहे हैं यूएस बोर्न इंडियन अमेरिकन से, तो ज़्यादा है या कम है, राइट? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? द आंसर इज इमिग्रेंट हाउसहोल्ड की ज़्यादा है, राइट, वर्सेस यहाँ के जो बोर्न है. तो इंडियन इमिग्रेंट हेरिड हाउसहोल्ड की मीडियन एनुअल इनकम पड़ती है 156,000 वर्सेस यूएस बोर्न इंडियन हाउसहोल्ड है वो 120,200 है. तो दोनों ही, बाय द वे, लाइक यू नो, दोनों को ही अगर आप कंपेयर करें तो यूएस की जो मीडियन हाउसहोल्ड इनकम है उससे काफ़ी ज़्यादा है. सो रफली जो यूएस की टोटल मीडियन इनकम आती है वो 84,000 आती है और ये वेल अबाउ द एवरेज. तो ओवरऑल अगर आप डायस्पोरा देखते हैं तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ऊपर है इनकम में, मगर आप इमिग्रेंट्स वर्सेस यूएस इंडियन बॉर्डर कंपेयर करें तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू. एक 156,000 पे है और यहाँ के जो बॉर्न है इंडियन पॉपुलेशन जो नेक्स्ट जनरेशन है दे आर अबाउट एट 120. पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो बिकॉज यू नो दे आर न्यू, दे आर यंग, दे आर इन द करियर्स एंड देन द माइंड सेट इज डिफरेंट, राइट? इफ़ यू लुक एट इट द अंडरलाइंग फैक्टर कि लाइक लोगों को फ्रीडम चाहिए, खुद का टाइम चाहिए वर्सेस कि नहीं कि दे आर नॉट रनिंग बिहाइंड मनी नाउ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज़ के अंदर में. चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन पे जाते हैं. तो 2026 में आपने 401k में मैक्स कितना डाल सकते हैं, राइट? आपके 401k रिटायरमेंट फंड होता है उसमें कितना डाल सकते हैं अगर आपकी एज 50 से कम है, राइट? तो व्हाट इज़ द नंबर, राइट? बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि लाइक 401k आपको कंपनी के थ्रू मिलता है एंड देन लॉट ऑफ पीपल इग्नोर इट. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आई एम रियली शॉक्ड कि मैंने बहुत ही लोगों से बात की एंड दे ऑल बिलीव इन मुझे आज कैश चाहिए पे चेक में, आई डोंट केयर अबाउट फ्यूचर. एंड आई वॉज लाइक ओके देन व्हाट आर यू गोना डू व्हेन यू आर ओल्ड. एक सिंपल सा आपको हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो गया पूरा ओल्ड एज में तो वेयर विल यू गो? और फिर वही, देन दे आर डिपेंडेंट ऑन द किड्स एंड यू नो द किड्स अगर आपके सही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर रास्ते पे हैं, राइट? यू आर गोना बी सेलिंग ऑल योर एसेट्स और विल बी वर्किंग टिल ओल्ड एज. तो लेट्स लुक एट द आंसर, राइट? तो अगर आपकी एज 50 से कम है तो 2026 में $24,500 तक आप डाल सकते हैं रिटायरमेंट फंड में. अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है, राइट, तो एक्स्ट्रा 8,000 आप डाल सकते हैं टू कैच अप, राइट? इसको बोलते हैं लाइक यू नो इफ़ यू हैवन्ट कंट्रीब्यूटेड व्हेन द इयर्स यू शुड बी, यू कैन कैच अप. दिस इज द कैच अप अमाउंट व्हिच यू कैन ऐड. और अगर आप 60 और 63 के बीच में है तो कैच अप बढ़कर 11,250 हो जाता है. तो IRA का कंबाइंड जो और अगेन रॉथ IRA में भी आप 7,500 डाल सकते हैं. तो दिस इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, राइट, यू नो 401k का, बट स्टिल देर इज ऑल्सो अ वैल्यू इन इट क्योंकि 401k इट्स अ नॉन टैक्सेबल एसेट. सो आप अभी आप आज पैसा डाल रहे हैं, आज टैक्स नहीं भर रहे, फ्यूचर में भरेंगे और जब उसका विड्रॉवल होता है तो उसके ऊपर आप टैक्स भरते हैं वर्सेस रॉथ IRA में भरते हैं. तो लिमिट्स आर गोइंग अप बिकॉज गवर्नमेंट नोस कि भाई आगे जाके बहुत महंगा होने वाला है ये सब चीज़ों को, राइट? इट्स नॉट गोना बी चीपर एनी मोर. तो हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो जाएगी, आप देख रहे हैं बहुत सारे बेनिफिट्स कट हो रहे हैं हर गवर्नमेंट प्रोग्राम से. तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज़ नॉट जस्ट आपने स्टॉक्स लेके रख लिए, इट्स ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टिंग इन योर रिटायरमेंट, राइट? एंड रिटायरमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको तो भी पैसा मिल रहा है. इफ़ यू लुक एट ओवरऑल स्टॉक मार्केट 358% ग्रो हुआ है, तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग होता है, उसके ऊपर डिविडेंड्स ऐड होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, राइट? तो अगेन द पॉइंट इज द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन व्हाट आई एम लेइंग अराउंड हियर इज कि भाई सोना ही सब कुछ नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है. एंड अगर आप नंबर देखते हैं तो स्लोली पता लगता है कि पीपल आर डाइवर्सिफाइंग, दे आर ऑल्सो बाइंग होम्स, दे आर ऑल्सो बाइंग, यू नो द इनकम्स आर गोइंग अप, दे आर ऑल्सो बाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स टू सिक्योर देमसेल्व्स. चलिए गाने वाने सुनिए, दे विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक.

0: WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड वी आर ऑन द शो दिल से देसी विद वैन. ऑलमोस्ट एक घंटे खत्म हो चुका है. वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, सोना, स्टॉक्स, यू नो, हाउसिंग क्या है, राइट, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स. यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-919-8595. इफ यू वांट टू शेयर व्हाट इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे बहुत ज्ञानी है हु कैन हेल्प आउट, हु कैन शेयर योर नॉलेज अबाउट, यू नो, इन्वेस्टमेंट. सो चलो चलते हैं, यू नो, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, राइट. तो दिस इज अबाउट अपना घर, राइट, रियल एस्टेट इन US, राइट. ये क्या है, राइट, कितनी बड़ी सरदर्दी है या व्हाट इट इज, व्हाट डू यू गेन इन लॉन्ग टर्म विद दिस. तो अब बात करते हैं घर की, राइट, क्योंकि हम देसी डायस्पोरा में, यू नो, अपना घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, राइट. एक प्राइड की बात है, एक अपना घर, जितना बड़ा घर उतना स्टेटस सिंबल बनता है सोसाइटी में. ये एक, यू नो, एक माइंड सेट हो गया है अब इस टाइम पे, और ये सपना, यू नो, सभी के दिल में होता है, राइट, व्हेन दे कम टू US, राइट. तो जैसे मैंने पहले बताया कि इफ यू सिंपली जस्ट लुक एट द नंबर्स, राइट, इंडियन हेडेड हाउस holds in US have an ownership of about 62%, matching from overall Asian, you know, population. So highest hain hum ghar khareedne mein, और अगर, यू नो, इफ़ यू लुक एट लाइक ओवरऑल हाउसहोल्ड अगर हम देखते हैं, तो US बॉर्न जो इंडियन नेक्स्ट जनरेशन है वो भी 60% तक है. तो इमिग्रेंट तो ऑलरेडी 63 पे हैं, एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन बॉर्न हो रही है, दे आर ऑल्सो बाइंग हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज. एंड ओवरऑल अगर हम देखें, हमारा डायस्पोरा इज सिटिंग एट 62%, विच इज़ अ प्रीटी सिग्निफिकेंट नंबर, राइट. जो you know, the first thing what everybody wants to do when they settle down is to buy the house, because we have this whole thing attached ki bhai shaadi hogi fir bacche school jayenge, you need a better school district and all of that. You naturally get into that, you know, house buying process eventually, right. And then again, it also kind of, you know, goes with the income. So agar aap income dekhe per household mein, to household income about US ethnicity groups mein dekhe to pretty high hai, roughly about 145,000 to 151,000 hai. Ye average bata raha hu main aapko, right. Which is कई लोगों की अबाउट 200-250 भी है, राइट. तो अगर अब एवरेज ही इतनी हाई है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल डिसेंट पैसे से, वी आर वेरी लकी पैसे के एंगल से, राइट. वेल अबाउ द US एवरेज ऑफ मीडियन इनकम, विच इज़ अबाउट 84,000, राइट, अगर देखा जाए तो. लोकली अगर आप देखें राली हाउसिंग मार्केट में, तो, यू नो, हाउसिंग सिट्स एट अबाउट 450-435,000, यू नो, रफली, you know, if you were to look at like year over year, right. Again, also the housing market has gone a little bit calmer now compared to that bidding war we had in like 2021 to 2023, jahan pe jo ghar half a million ke the, maine khud mein meri community mein dekha hai ke 500,000 ka ghar 1.1 million 1.2 tak mein bika hai, and I was shocked to see like ye kya ho raha hai, right. It was such a, you know, desperation aa gayi thi logo ke andar ki bhai ghar lena hi lena hai, because the interest rates were low and all of that. So ye acha sign hai, right, this is a good sign that you're buying a house. And isme bahut sari debates hai ki bhai house is not an asset, it's a liability, because uske apne kharche hain. Agar aap total cost of the house dekhiye, to 500 ka house hai, but uske upar aap interest gine to wo 800 ka house hai, depending upon what interest rate you borrowed and all of that. Wo sab chalte rehta hai, right. But again, you also have to factor in ki aap us ghar mein reh bhi rahe hain. So at the end of the day, you own something versus you renting when you don't own anything. To iski ek apni alag si debate hai. तो हमारे, यू नो, कम्युनिटी में, US में, अच्छी बात है कि हम घर खरीद रहे हैं, अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं, वी आर फ्रीक्वेंटली बाइंग इट. लेकिन, यू नो, घर खरीदना ही काफ़ी नहीं है, राइट. ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज, यू नो, ओवरऑल मार्केट कैसे मूव करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वन यू आर बाइंग अ हाउस. यू नो, इफ़ यू आर बाइंग इन अ नेबरहुड विच इज़ डिटीरिएटिंग, और, यू नो, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, और इफ़ यू आर बाइंग इन अ वेरी रूरल प्लेस जहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स फैमिलीज नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, तो एक पूरा एक जाल जंजाल इसके साथ में बुझा हुआ होता है जब आप घर लेते हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्मार्टनेस नीडेड इन डूइंग दिस, एंड ऑफ कोर्स यू नो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च इन दैट. सो दिस इज समटाइम्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग वर्सेज इट कैन ऑल्सो बी अ हेडेक, बिकॉज समटाइम्स प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो गो अंडर वाटर. जस्ट लाइक आप सोना खरीद रहे हैं, राइट, कि आपने 4,000 अनाउंस पे ले लिया और अब वो इट्स टेकिंग टाइम. बट हाउसिंग इज डिफरेंट, बिकॉज सोना तो आपने लेके रख लिया, हाउस लेके उसके ऊपर एक्सपेंसिस भी आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है which keeps going up, and then uski repair maintenance hoti hai. So you know, that's also one of the side to look at it. Raleigh ka housing market thoda ab cool down hua hai. If you look at it, 2023 mein jo bidding wars ho rahi thi 2023 tak, wo ab thodi nahi hoti. Ab you know, ab buyers ke paas thoda zyada negotiating power hai, especially agar aap first time buyer hain. And again, is area ko grow hone ke liye it will take time to go into a metropolitan level, right? Because अभी भी उस लेवल पे नहीं है. छोटे छोटे टाउन्स जो हैं वो चला रहे हैं, इट्स नॉट अ एक्चुअल सिटी देखा जाए तो, बिकॉज टाउन्स ऑपरेट इन अ डिफरेंट फैशन. वहाँ पे ग्रोथ, वहाँ पे सब चीज़ें, आई एम नॉट सीइंग द ग्रोथ नॉट देयर, द ग्रोथ इज देयर बट देट स्टिल नीड्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप कंपेयर कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी या बड़े यू नो स्टेट से, जैसे अटलांटा और ये सब जगह से, तो वी आर माइल्स अवे फ्रॉम दैट. बट यू नो फ्लिप साइड यू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. यू नो शांति है, यू हैव सो मेनी थिंग्स हैपनिंग हेयर, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है. जब एक कम्युनिटी, एक छोटे छोटे टाउन्स जब सिटी बन जाते हैं तो एवरीथिंग गेट्स कमर्शलाइज. एक एक यू नो छोटे छोटे स्क्वेयर फुटेज की भी वॉर शुरू हो जाती है. सो दैट्स व्हाट यू सी ऑल द टाइम नाउ. अगर आप अभी भी देखेंगे तो पहले यू यूज टू गेट लाइक बिगर हाउसेस, अभी न्यू जो घर बन रहे हैं वहाँ पे आपको 3500 स्क्वेयर फीट मिलना, मतलब यू आर पेइंग अ प्रीमियम प्राइस फॉर दैट. बैक इन द डेज यहाँ पे अगर आप 2020 के पहले हो तो 3900 वाज नॉर्मल हियर, इवन बिफोर दैट, राइट, इट वाज नॉर्मल टू गेट अ हाउस दैट बिग. बट अब वो सब चीज़ आगे जा रही हैं, फ्रीक्वे वरीना, गार्नर, वो सब एरिया पे पहुँचे बिकॉज वहाँ पे लैंड बचा है, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज चीपर. अगर वहाँ पे भी बिल्डर्स आर स्मार्ट now, they're building smaller homes to have a smaller lot and then they can build more houses there. So ye bhi ek cheez shuru ho gayi, it's a whole different topic as anyways I don't want to you know segue from that. But you know if you look at it, yahan Raleigh mein bhi hum dekhte hain ki young desi families jo hain apna pehla ghar le rahe hain usi ko wo real investment samajh rahe hain, but that is actually not true. You have to diversify apart from home because housing takes longer time to grow. If you're lucky and you're in the right place, if you're not, then you know things can change. There's a lot of factors involved in investment properties. Aur agar aap dekhe to kai families to ek step aage hain because unhone rental properties bhi le rakhi hain, which is also a passive income. So you know that is also one good area. Again, choose wisely what you're buying, how you're buying, when you're buying, because it all depends. You know, ek cheez dusre ko reflect karti hai. You know, agar interest rate upar jate hain, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, ऑल ऑफ दीज यू नो द नंबर्स जो इकोनॉमिक्स के चलते हैं, इट्स लाइक यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट अगेन बाइंग अ हाउस एंड एसेट इज नेवर अ रॉन्ग थिंग टू डू, नॉट सेइंग दैट, बट यू जस्ट हैव टू बी वाइज इन दैट. तो हाउसिंग इज ऑल्सो अ गुड थिंग, एक्सेप्ट देन इफ यू आर डूइंग इट वाइजली, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. चलिए गाना वाना सुनिए, फिर हम विल बी राइट बैक, विल कीप टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स ऑल डे टुडे. तो अभी तो एक पूरा घंटा पड़ा है, एंड विल बी राइट बैक.

0: विश्वास नहीं करना, वो जाके
1: अपने। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

क्या बात है, ऑल टाइम फेवरेट, माय फेवरेट बपीदा, यू नो, चाहे रिमिक्स हो चाहे उनकी वॉइस हो, यू नो, हिज सॉन्ग्स, हिज लिरिक्स आर ब्यूटीफुल एज यू ऑलवेज. तो आप सुन रहे हैं अपना आपका रेडियो शो विच इज़ दिल से देसी विद वैन. वी मीट एवरी सैटरडे, सो भूलिएगा मत, यू नो, आई विल बी बैक नेक्स्ट सैटरडे एज वेल. तो चलिए थोड़ी अभी प्रैक्टिकल बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की यहाँ यूएस में. तो अगर आप यूएस में रिटायर हो रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें समझनी जरूरी है, बिकॉज यू नो सिंपल भाषा में, यू नो, अ लॉट ऑफ things are, you know, ignored because India में थोड़ा factor different होता है, चीज़ें different तरीके से चलती हैं, वहाँ की retirement planning और वो सब totally different है versus how it works here. तो 2026 में couple things to remember, right? तो अगर if you are having आपका employer अगर आपको 401k दे रहे हैं तो max you can contribute is about 24,500 if you are under 50 with an extra 8,000 which is a catch up amount allowed once you turn 50 that brings you to 32,500. again ये आपने अगर 100 रुपये कमाए तो आप उसके पहले ही निकाल सकते हैं, यू नो, बाहर, एंड देन दैट मनी विल नॉट बी टैक्स्ड बाय यू राइट नाउ, इट विल टैक्स वंस यू गेट रिटायर्ड. ये ऑप्शन है, बहुत से एम्प्लॉयर्स इसको मैच करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को. तो इफ़ यू आर बिटवीन 60 एंड 63, स्पेशल हायर कैचअप अमाउंट है 11,250.

अप्लाइड इंस्टेड ऑफ 8,000। तो अगर आप 60 और 63 के बीच में और आपने बिल्कुल भी सेव नहीं किया तो ये एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, थैंक्स टू द रूल विच हैज़ बीन चेंज नाउ, राइट। 2026 में अगर आप IRA कंट्रीब्यूशन लिमिट देखें तो रॉथ IRA इज 7,500 विच इज़ यू नो एलिजिबिलिटी फेजिंग आउट बिटवीन 153,000 to 168,000 for if you're filing single, right? I hope if you're single and अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप 7,500 उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल सकते हैं और that will not be taxed to you when it's a tax-free money growing, right? और आप इसमें बहुत सारी चीज़ों में आप sometimes you can also withdraw if you have certain situation, जो उसकी जो growth होती है आप withdraw कर सकते हैं। If you still hold a bank account, property, investment back in India, often inherited from parents or something, US में एक rule है which requires you to report those foreign assets through FBAR or FT, FATCA. For many families, they don't know or some of them knowingly ignore that and you will be facing deep penalties अगर इसमें पकड़े गए तो। मैंने इसके ऊपर एक पूरा podcast किया था आराधना जी के साथ में, because you know this is thing where a lot of people miss it or if they don't report, US has a treaty with India and India has a treaty with US जहाँ पे सब banking information share होती है, तो अगर आप कहीं flag हो गए तो you know फिर आपको वही penalties वही धक्के खाने पड़ेंगे। तो सबसे common mistake जो लोग करते हैं अपने employer का पूरा 401k match नहीं करते, which is you know क्योंकि वो contribution you know नहीं करते तो ये literally free पैसा आप table पे छोड़ रहे हैं। तो for an example they'll contribute you about 6% of your total salary. तो अगर आपकी salary you know 100,000 है up till 6% is 6,000, वो आपको 100,000 के ऊपर अगर आप जो भी परसेंटेज ले रहे हैं और उसका 6% वो आपको कंट्रीब्यूट करें जो आप फ्री का पैसा छोड़ रहे हैं, विच इज़ यू नो यू शुड नॉट, एटलीस्ट आपको मिनिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए बिकॉज एवरीबडी विल नीड मनी जब आप बूढ़े होंगे। क्योंकि अब मैं जो पेस पे काम कर रहा हूँ आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द एज ऑफ 60, और चीज़ें दुगनी तिगनी चौगनी महंगी होगी उस टाइम पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत लोगों को क्या लगता है कि स्पेशली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल के बैंक में कैश होना चाहिए, मुझे आज पैसा चाहिए मेरे हाथ में, बात का बाद में मैं देख लूँगा, बट ऑफ्टन टाइम्स जो बाद में यू रिपेंड ऑन दैट टाइम इज़ गॉन, द कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ योर मनी इज़ गॉन एंड एट दैट पॉइंट आपका वो कैश ऑलमोस्ट एवरी ईयर डिप्रिशिएट होता है। तो जो आज आपकी डॉलर की वैल्यू आज है वो नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगी, इट ऑलवेज गोज डाउन, राइट। दूसरी कॉमन मिस्टेक, अगर आपके पेरेंट्स इंडिया की प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, तो जो मैंने बताया कि लाइक यू नो एफ बार की फाइलिंग भूल जाते हैं, या ये छोटी सी बात लगती है मगर इसकी पेनल्टी बहुत सीरियस है। आई विल एडवाइस यू नो इफ़ यू आर इनटू दिस सिचुएशन, अगर आप दोनों कंट्रीज में पैसा रखते हैं, इफ़ यू आर यू नो इन्वॉल्व इन टू कंट्रीज, योर मनी इज़ इन टू प्लेसेस, एक CPA रखिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर रखिए टू अंडरस्टैंड, बिकॉज टैक्सेशन ऑलवेज चेंज होता है इंडिया में, तो खास करके टैक्सेशन एवरी ईयर चेंज होता है। तो यू नो दिस इज़ व्हाई आई एम लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, और इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड किया है मैंने कि भाई बहुत लोग इसके अंदर फंसते हैं, विच नॉट अ पीपल आर अवेयर ऑफ। तो सिंपली नॉट अ साइन टू इग्नोर, आई डू नो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल होल्डिंग सेविंग्स अकाउंट्स इन इंडिया वेयर दे बीन स्टेइंग हियर फॉर ऑलमोस्ट ईयर्स, नीड टू कन्वर्ट इट टू NRE NRO जो भी होता है वहाँ पे, बट यू नो दीज आर द रूल्स एंड लॉज, और अब इंडिया वो नहीं रहा जहाँ पे आप कुछ भी अंडर द रग्स कर सकते हैं, थिंग्स गेट्स कॉट इन द सिस्टम प्रीटी इजीली बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड, योर आधार, योर पैन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गेटिंग एडवांस इन इंडिया एज वेल। तो प्लीज़ यू नो फोकस ऑन योर रिटायरमेंट एज वेल, एंड रिटायरमेंट का एक जरिया है स्टॉक्स, 401k, इसमें सब यही होती है, इक्विटीज होती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू जस्ट कैनॉट ब्लैंकली इग्नोर एनी मोर, दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इट। तो चलिए गाना वाना सुनिए, देन आई बी राइट बैक विद फ्यू मोर फैक्ट्स। एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस ऑन माई फोन, मुझे 3 मैसेजेस आए हैं विच आई विल शेयर इन द फ्यूचर सेगमेंट, कि भाई हाउ हैव पीपल इन्वेस्टेड एंड यू नो हाउ आर देयर सम गुड स्टोरीज, सो आई विल शेयर आफ्टर द ब्रेक। थोड़े गाने वाने सुनिए, देन आई विल बी राइट बैक।

क्या बात है दोस्तों। सो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा और 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम और 1419 एएम पे। एक 1 आवर एंड 30 मिनट्स हो चुका है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। आप सुन रहे हैं दिल से देसी शो और मैं हूं आपका होस्ट वैन। तो चलिए, मैंने आपको जैसे कहा था कि आई एम सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल आर लिस्निंग टू दिस शो। एक्चुअली आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक एंड मैसेजेस फ्रॉम एवरीबॉडी, सो थैंक यू फॉर एवरी वन, यू नो, फॉर यू नो मैसेजिंग मी एंड गिविंग योर थाट्स एंड कीपिंग मी, यू नो, माई मोरल हाई टू डू दिस शो एवरी सैटरडे एंड ब्रिंग दीज टॉपिक्स। तो तीन मैसेजेस आए मुझे। पहला, आई वॉन्ट you know reveal the name or anything, but you know, again, thank you for sharing, you know, it tells me that you're listening to the show and you are enjoying it. To pehla tha ke meri shaadi ke gold se maine apna pehla business start kiya, ek uncle hai carry mein, which is wow, you know. To again, gold is liquid and you can sell it anytime, and it can, I know personally, you know, one of the incident from my dad back in 1990s in India, jab wo embargo laga tha India ke upar and all the businesses were suffering, that time my dad had to end up selling gold to survive. So yeah, these are very important things in the dire situations. I think dollar us time pe 26 rupees ka hota tha back in India, if I'm not wrong. दूसरा मैसेज आया कि हमने पहला घर मॉरिसविल में यहीं लिया है, इंडिया में नहीं। दिस वॉज अवर फर्स्ट होम एंड वी पर्पसली चोज टू बाय होम इन US। एक यंग कपल है एपेक्स में जिन्होंने ये बताया है। एंड थर्ड वन इज कि मैं सिर्फ इंडेक्स और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, गोल्ड मुझे समझ नहीं आता। इट takes long and it's a dead asset, but again, it's good. I don't disagree with it. This is one of the, you know, listeners from RTP. So ye sun ke bahut acha lagta hai, you know, ki like everybody is into investing at some point or the other, chahe aapko jo bhi pasand hai, and people are diversifying, aur har लोगों की एक अलग अलग जरिया है, रास्ता है इन्वेस्ट करने का, सेव करने का, बट द गोल इज सिंपल कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं, राइट? तो द की टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि भाई, इफ आई वुड समराइज दिस वेरी सिंपली, राइट, कि सोना एक लिक्विडिटी है, एक इमोशनल सिक्योरिटी है, लेके अच्छा लगता है, एंड देन यू इट ऑल्सो, लेकिन ये एक ग्रोथ की इंजिन नहीं है। दिस इज अ सिक्योर्ड थिंग, कि भाई लास्ट रिजोर्ट काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव दिस विथ यू, यू कैन सेल इट एनीवेयर इन द पार्ट, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यूर इन, कोई भी गोल्ड को एक्सेप्ट करता है, एंड देन दे विल गो थ्रू विद दिस। रियल इस्टेट एक बड़ा एसेट है, एक बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आप वहाँ पर रह रहे हैं, उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, घर, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व विद दैट। आपके बच्चे वहाँ पर स्कूल में जाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट। बट अगेन, लॉन्ग टर्म में, यू नो, एंड दिस इज ऑल्सो लिक्विड एसेट, आप जो भी चाहे उसे बेच सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट इज, देयर इज लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन्वॉल्व इन दैट, बट जल्दी कैश मिल जाता है, राइट? लाइक यू गेट इट विद इन लाइक 2-3 मंथ्स, इट्स नॉट इंस्टेंट, बट यू गेट इट विद इन 2-3 मंथ्स। स्टॉक्स, एक्विटीज, बॉन्ड, दीज थिंग्स, यू नो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेटर है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत बहुत सीरियस होती है, विच यू, आप में दम होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, एंड टू मेक श्योर दैट आर यू इन्वेस्टिंग इन द राइट थिंग और नॉट। तो यू नो, तीनों ही चीज़ एक अच्छी चीज़ है, राइट? तो अगली बार जब आप डाइनिंग टेबल पे, यू नो, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और दोनों जनरेशन्स की थाट प्रोसेस को, यू नो, डिबेट कर रहे हैं, तो इट्स नथिंग इज रॉन्ग, इज इट्स व्हाट द थिंग इज। एवरी जनरेशन थिंक्स अबाउट थिंग्स वेरी डिफरेंटली। बैक इन द डेज, जैसे मैंने शो शुरू किया था, तब बताया था कि तब सोना था, फिर घर आया, और अब इक्विटीज और ये सब चीज़ें हैं। तो देर इज, इन सब का आंसर, यू नो, बीच में है, इट्स नॉट ऑन द एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट। इट्स लाइक ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए, गाना वाना सुनिए, देन आई विल बी राइट बैक, एंड आई विल कम बैक विद मोर स्टफ। सो एक दो गाने हो जाए, देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक।

सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता ऐका महाराष्ट्र से ठोर।

क्या बात है, सुखविंदर सिंह ऑल टाइम बेस्ट एंड फेवरेट। आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज सॉन्ग्स। ये पुराने गाने हैं बट जोरदार धमाकेदार है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड आप सुन रहे हैं शो दिल से देसी विद मैन ऑन 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम या 1419 एएम पे आप ट्यून इन कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-999-8595। तो चलिए हम चलते हैं द सेकेंड लास्ट सेगमेंट पे विच इज़ द मिथ बस्टिंग रैपिड फायर। राइट, कि भाई सच और जो बोलते हैं ना कि एक अफवाह बन जाती है, राइट, तो उसके ऊपर बात करते हैं आज। सो I'll put a myth out and then you can guess or I'll tell you, you know, whether that myth is busted or not, right? Or what is the reality? So, sona kabhi value nahi chhodta, wo hamesha safe hota hai. That is kind of partially true. Gold has genuinely held its value against S&P 500 over the last 20 years, but agar aap last 10 saal mein dekhe, toh stocks have pulled back. Gold basically does not give you any interest, dividends, while you hold it, jab aap rakhte hain, it is like a hedged, right? It's not a growth engine. It's like aapne usko rakha hai apne paas mein, बड़े बड़े सोना अपने आप डबल या मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट, तो उसकी बस वैल्यू ग्रो होती रहेगी। दैट्स द रियल फैक्ट अबाउट द गोल्ड, राइट। घर खरीदना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, कभी लॉस नहीं होता, दैट इज पार्शली ट्रू। यू नो, अगर आपने घर लिया है एंड इफ इट अप्रिशिएट, येस यू आर इन द बेस्ट जोन, बट देर इज लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव बॉट द हाउस, समटाइम्स दे हैव टू लूज द वैल्यू और इट्स अंडर वाटर प्रॉपर्टी, जिसकी आप मॉर्गेजेस भर रहे हैं मगर उस ने उतनी वैल्यू ही होल्ड नहीं किया फॉर व्हाटएवर रीजंस, राइट। होम ओनरशिप हैज जेन्युइनली बिल्ट वेल्थ फॉर लॉट ऑफ इंडियन अमेरिकन फैमिलीज, अबाउट 62%, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी घर ओन करते हैं, बट रियल एस्टेट इज लिक्विड, राइट। हियर इन राली, यू नो, अगर आप देखें तो होम वैल्यूज हैव रफली बीन फ्लैट, स्लाइटली डाउन फॉर लास्ट ईयर, और यू नो इतना कुछ वो नहीं है अभी जो वॉर है, हाउसिंग वॉर जो पहले थी। ऑफकोर्स यू नो गुड बेस्ट नेबरहुड्स गो आउट प्रीटी वेल, बट अगर ओवरऑल एरिया को देखते हैं तो things have kind of cooled down a little bit. तो इसके एक phases होते हैं, just like you know any assets you're buying, it has its phase. So it's not guaranteed. It's not a one way bet कि लगाया तो पैसा आना ही है. It never works like that in housing. और बहुत सारे factors उसमें involved होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, right, कि you know your housing may be built for something, और वहाँ से कोई एक रोड निकल गई, यहाँ पे future plan development का था मगर वो plan development का cancel हो गया, tons of different things attached to it, you know, तो things change, but long term में yes it's going to appreciate, but also the housing will also have its own wear and tears and all other things coming, going to be happening along with that. Third one is 401k में invest करना optional है, कोई जल्दी नहीं है, you know, बाद में शुरू कर लेंगे, right? It's not true, right? It's not a good thing for you because employer match is essentially a free money, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप छोड़ के जा रहे हैं टेबल पे if you skip it, right? क्योंकि employers don't care if you leave it. But at least starting early gains you something, which is the important thing is compounding money with dividends, or wo uske value grow hoti hai. Of course as a company badhti hai to uske stocks mehenge hote hain, company ki value badhti hai. Back in the days when I know Tesla ka stock was $55 or something, and aaj dekhiye kahan hai, Nvidia chips, ye sab cheeze grow ho rahi hai, right? So you know there is money flowing, but you have to be in the right place at the right time. So every year you wait, it is actually costing you and your contribution limit. आपकी बाद में बढ़ेगी क्योंकि आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो रेस में आने के लिए, राइट, टू कोप अप विद द एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस जब आप बूढ़े होंगे तब. सिर्फ अमीर लोग ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आज के जमाने में तो माई गॉड, वेन यू हैव द एप्स लाइक रॉबिनहुड एंड ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स, आई डोंट इवन रिमेंबर दैट अदर नेम्स, बट इतना ईजी है. अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप बस सिंपली ऑटो मोड पे
लो कॉस्ट इंडेक्स फंड लेके रख दीजिए और वो ऑटोमेटिकली यू नो व्हाटएवर डे यू पिक अप लाइक वेंसडे एट 3 o'clock इट विल विड्रॉ मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर यू. वो पुराना ज़माना जहाँ पे आपको कमीशन देना है सब चीज़ सब खत्म हो गई है. सो यू नो मोस्ट अमेरिकन स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली विद जस्ट अ फ्यू डॉलर्स फ्रॉम पे चेक्स, राइट. एक नॉर्म बन चुका है यहाँ पे. अगर आप नवे आए हैं यहाँ पे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज यू नो फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल्सो your freedom to live in future in you know ek azadi se aap jee sakenge jab aapke jeb mein paise honge to, right. So you don't need to be wealthy to start. You can start anytime you want with a click of a button and you can move on. The sooner you start, the better it is for you. The longer you wait, you are kind of going to be missing out in the whole journey of investing and you know being financially stable for yourself. So, suniye gaane ye the thode myth main bust karna chahta tha so that everybody understand ki bhai you know aisa nahi hai ki stock market mein invest karne ke liye aapko koi broker ke paas jana hai. Everything is on the phone here. The beauty of simplification here in US is this. Agar aap notice karenge to at least maine to last 5 saal mein kabhi bank mein kadam bhi nahi rakha hai. Everything happens online or either you just go to the drive through and walk away. I mean, I honestly don't even carry a single dollar cash because everything is digitalized, right? Like you don't need to have my wallet bhi carry nahi karta because everything is just in Apple Pay. So you can imagine how easy things are to do here. It's not like aapko wahan pe bank mein jana hai India ke jaise aur kisi ke tarle karne ke bhai mera KYC karo aur sahab ye kar do sahab wo kar do. All that nonsense is not, you know, have to be dealt here. So you know koodiye iske andar aur dekhiye, right. You yourself will see the value of this, ke how the money grows and how it compounds. And don't look at it. I would say the best thing is to never look at it. Just aap invest karke chhod dijiye and look at it after a couple of years. In fact, मैंने क्यों ये topic देखा कि मैंने कल ही अपना एक Fidelity का account खोला and it was just on auto pay. वो चलता रहता है, it buys like S&P or whatever QQQ जो भी है every week or something, and all of the sudden I've been doing it for like past 7-8 years now and I was shocked to see the amount. फिर मैंने बोथ ऑफ माई किड्स व्हेन दे वर बोर्न आई ओपन अप देयर यू नो एजुकेशन फंड. तो मैंने ऐसे उसको खोल के देखा तो मैं बोला ओह माय गॉड ये तो लाइक इट इज़ ग्रोइंग एंड व्हेन दे विल टर्न एंड गो इनटू कॉलेज दे विल हैव मनी रेडी आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉलेज फी एंड ऑल दैट. तो यू नो कंपाउंडिंग इज द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. जैसे मैंने राजेश जी के साथ में भी यहाँ पे एक पॉडकास्ट किया था अबाउट यू नो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हाउ कैन यू इन्वेस्ट अर्ली एंड बी अहेड ऑफ द गेम. अगर आप रह गए तो रह गए, यू नो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ किसी काम का नहीं है यहाँ पे. तो सुनिए थोड़े गाने वाने देन वी आर बी राइट बैक फॉर द क्लोजिंग. ऑलमोस्ट 2 घंटे होने आ रहे हैं. आई होप यू एंजॉयड. आई एम रियली थैंकफुल फॉर पीपल हु ऑल्सो टेक्स्टेड मी एंड शेयर सम ऑफ दीज facts or some of their stories. So we'll be right after the break.

तो जी हाँ दोस्तों, वर कमिंग टू दी ओ तो जी हाँ दोस्तों, आई एम सॉरी, वर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, वी आर 5 मिनट्स लेफ्ट, सो आई जस्ट वांटेड यू नो पुट अ क्लोजिंग टीजर हियर. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू द शो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिलते रहेंगे, आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक. वी आर गोइंग टू बी हेडिंग इन टू सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया, विच विल बी 15th of August, और लकीली दिस टाइम इट्स कमिंग ऑन सैटरडे. तो देर विल बी अ लॉट ऑफ यू नो इवेंट्स हैपनिंग, स्पेशली देयर इज अ फ्लैग होस्टिंग एंड देयर इज अ ह्यूज मेला एंड ऑल अदर थिंग्स हैपनिंग, सो प्लीज शो अप देयर. एंड देन यू नो आज हमने देखा कि लाइक यू नो सोना, जमीन, स्टॉक तीनों अपनी जगह पर सही है, राइट? कोई एक सबसे बेस्ट नहीं है. स्ट्रैटेजी को बैलेंस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. थोड़ा सोना अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, थोड़ी जमीन अपने रूट्स के लिए, अपनी यू टू हैव अ रूफ ओवर योर हेड इज इंपॉर्टेंट, और थोड़ा स्टॉक मार्केट अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिकॉज ऑल थ्री व्हेन यू डाइवर्सिफाई, वन गोज डाउन द होल हाउस डजंट गो डाउन, राइट? आपके पास कुछ ना कुछ, बोलते ना कि पुटिंग एग्स इन वन बास्केट इज नॉट अ राइट थिंग, दैट्स ट्रू इन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू नो एक ही जगह पर डाल के सब कुछ लूज करना इज नॉट अ गुड थिंग. सो सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स से यही बात जरूर कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस और आपका डेटा शेयर कीजिए, और दोनों को मिला के बेस्ट डिसीजन लीजिए, राइट? बिकॉज देर इज़ नो गोल्डन रूल. एंड कोई भी आपको आके बोलता है कि आज मैं आपको पैसा दो एक साल में डबल कर दूंगा, देन यू नो आपको वो शेख चिली के सपने ही दिखा रहा है, बिकॉज प्रीटी मच इट नेवर हैपन्स, एंड इफ इट हैपन्स यू आर लकी, बट यू आर टेकिंग अ बिग बैट अगेंस्ट इट. तो चलिए मिलते रहेंगे, विल सी यू नेक्स्ट वीक अगेन. आई होप यू स्टे सेफ, हेल्थी एंड एन्जॉय द वीकेंड, और गर्मी का मजा लीजिए. बैक to school is also coming, the lots of backpack giveaways are happening, so you know look out for the events. But other than that, you know gaane wane enjoy kariye and stay healthy. Aap sun rahe the Dil Se Desi with Van on Radio Naira, and you know enjoy your week.

0: डजंट लव बिरयानी? बिरयानी के तो भाई नॉन इंडियंस भी फैन हो गए हैं, कैसे बताओ? This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency Naira. And you know, BTS V has once again melted hearts after his sweet interaction with the Desi Army went viral when a fan told him they had prepared biryani for him. Taeyeon's wholesome reaction left Army smiling and the internet can't get enough. He's literally salivating, you know. Biryani ka naam sunke to kuch hota hai, aise man mein bilkul khushi si ho jati hai aur khane ka bhook lag jata hai. Well, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
2: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
3: From crispy Delhi style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
5: कंटेम्पररी एंड क्लासिक ज्वेलरी डिजाइंस टू फिट एवरी ओकेजन. खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स हैज यू कवर्ड फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स. वी क्राफ्ट द प्योरेस्ट 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डैजलिंग डायमंड्स ज्वेलरी विद टॉप क्वालिटी एंड फिनिश. वी ऑफर बेस्ट वैल्यू इन ज्वेलरी अलॉन्ग विद टॉप क्राफ्टमैनशिप एंड फेयर मेकिंग चार्जेस. गोल्ड बाय बैक, इजी 12 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at
1: 919-388-8383. Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka desi, pakka local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WTMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल।

0: यू नो, एक पॉइंट ऐसा आता है जब कोई आपकी लाइफ में ऐसा इमोशनल सपोर्ट लेके आता है ना, एंड यू जस्ट नीडेड दैट. तो मानते हो कि नहीं कि मिरेकल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, है ना? This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Sanjita Sekh reflected on the valuable lessons she took away from working on the sets of Ikka. Especially witnessing Sunny Deol's dedication during one of the toughest phases of his life, she recalled that despite the recent demise of his father, Dharmendra, the actor continued to report to the shoot and complete his work with unwavering commitment. She said, I remember Sunny sir coming for the shoot, Dharam sir had just passed. And I would say, kya professionalism hai yaar, is level pe aake to bol bhi nahi sakte na ki, एक हफ्ता दस दिन शूट बंद करो, मैं नहीं आता आज सेट पर क्योंकि आई डोंट फील लाइक शूटिंग. बट नो, दैट मैन यूज्ड टू कम टू द सेट, डू हिज वर्क, टू लीव एंड लीव. तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एक्चुअली मैन, दिस इज सच अ, मतलब जब भी आपने कोई कमिटमेंट दे दी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज उस कमिटमेंट के आड़े आनी चाहिए. कोई भी, रिमाइंड यू, कोई भी चीज नहीं, बिकॉज कमिटमेंट इज द बिगेस्ट थिंग. आपकी जबान से निकली हुई बात से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता. सो बहुत सोच समझ के पहले तो कमिटमेंट करनी चाहिए, और बिल्कुल सोच समझ के बोलना चाहिए ना. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक.
1: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: मुझे ना वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है जब एक वुमन एक दूसरे वुमन के लिए स्टैंड लेती है और वो उसको डिफेंड करती है. इट्स सो गुड, यू नो, इट्स सो एम्पावरिंग. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Amisha Patel recently responded to a fan during Ask Emmy session on X after they claimed Preeti Zinta appeared to be copying her iconic Gadar character, Sakina, in the trailer of Batwara 1947. The fan wrote, "Have you watched the Batwara trailer? It feels like Preeti Zinta is trying very hard to copy your iconic Sakina, but some characters are simply unforgettable and no one can recreate the magic you and Sunny Sir gave us in Gadar." Reacting to the comment, Amisha replied, "Wo bhi bahut khubsurat hai. भाई, सकीना विशेज हर द बेस्ट. तारा का ध्यान रखना टिल ही इज नॉट बैक टू वेयर ही बिलोंग्स. बटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल एंड प्रीति जिंटा इज सेट टू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन एंड इट इज स्लेटेड टू रिलीज ऑन ऑगस्ट 14. नो मैन, ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर कि प्रीति जिंटा मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

कुत्ते इडियट, हाँ तेरी तो एक चांटा मार के ना तेरा मुंह सजा दूँ।

रहे तू? नहीं मानेगा?

0: Sonali Bhadauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana, all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

गुड इवनिंग रैली धर्म और पूरे आरटीपी एरिया को आपके होम टाउन स्टेशन पर शनिवार की शाम के ठीक 7 बज चुके हैं एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स में उस सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। वीकेंड की वाइब्स पूरी तरह से हवा में है बॉस, चाहे आप घर पर बैकयार्ड पर ग्रिलिंग की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हो या अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे हो। गाड़ियों का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि रात 10 बजे तक आपके इस सैटरडे सफर को सुपर हिट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी और मेरी है। आज के शो में बहुत कुछ खास होने वाला है, रैली की कुछ बेहद ज़रूरी और फ्रेश खबरें हैं, बॉलीवुड साउथ के आज के सबसे बड़े ऐतिहासिक सिनेमा अपडेट्स है, एक रूहानी कहानी और बेहतरीन शायरी भी। बने रहिएगा मेरे साथ एंड सुनते रहिएगा रेडियो नायरा पर।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने, एक गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड कैसे चल रही है आपकी सैटरडे नाइट्स रैली के लाइव म्यूजिक लवर्स के लिए आज शनिवार की रात का एक बहुत ही फ्रेश और कड़क अपडेट। अगर आप इस वक्त डाउनटाउन के आसपास है तो रैली के पिन स्टेट कॉफी वेन्यू पर आज रात ठीक 7 बजे बॉय गर्ल राइजिंग और हेनरी ल्यूथर एंड द ब्लैकआउट्स का लाइव एल्बम रिलीज हो चुका है। वो अपने नए एल्बम को पूरा लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये नो टच टर्न अवे फॉर लैक ऑफ फंड्स बेसिस पर चल रहा है, यानी म्यूज़िक हर किसी के लिए है। तो भाई अपनी गाड़ी का रुख मोड़ो और लाइव कॉफ़ी म्यूज़िक का मज़ा लो। सुनते हैं अगला एक गाना, एंड आज की वाइब तो वाकई में काफ़ी बेहतरीन है, और ऐसी म्यूज़िकल ट्रीट अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर इसका लुत्फ़ जो है वो उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंजॉय।

पूरे वीक भर की भाग दौड़, कॉर्पोरेट मीटिंग्स और कोडिंग के बाद जब सुहाना शनिवार और ऐसी ठंडी और खूबसूरत शाम आती है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। इसी सुकून के नाम मेरा पहला शेर अर्ज है मेरे प्यारे लिसनर्स के लिए। थक गया है दिल इस शहर की भाग दौड़ से, थक गया है दिल इस शहर की भाग दौड़ से, चलो अब यादों की वादियों में शाम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वीकेंड खुद को रिबूट करने का नाम है दोस्तों। मतलब आप कितने भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, अगर वीकेंड में आपको पता है कि आप कैसे रिबूट हो सकते हो तो आपसे बढ़कर लकी कोई नहीं है। दुनिया के सारे स्ट्रेस को किनारे लगाइए और एंजॉय कीजिए। रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स मेरा शो चलता है, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। म्यूजिक इज अ ग्रेट थेरेपी, तो क्यों ना इस शाम को और बेहतरीन बनाया जाए ये आने वाले अपकमिंग गाने के साथ। बने रहिएगा

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने गाना एंड रात के लगभग 8 बज चुके हैं और अब वक्त है सीधे बेंगलुरु और मुंबई का रुख करने का, जहां आज इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। केजीएफ स्टार रॉकिंग स्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का ग्रैंड और धमाकेदार ऑफिशियल ट्रेलर आज यानी 8 अगस्त को बेंगलुरु के एक मेगा इवेंट में लॉन्च कर दिया है। इस इवेंट के लिए कियारा आडवाणी और डायरेक्टर गीतू मोहन दास भी बेंगलोर पहुंचे थे। ट्रेलर में यश का वो खूंखार गैंगस्टर अवतार और डार्क अंडरवर्ल्ड की झलक देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं बॉस। ये फिल्मी कहानी जो है ये बहुत ही अलग लेवल की है एंड कहानी भी जो है वो यूनिक है, ऐसा बताया जा रहा है। ये फिल्म इसी महीने 26 अगस्त को सिनेमा घरों में आने वाली है। चलिए इस तगड़े इवेंट पर एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड अवेटेड, मच अवेटेड फिल्म थी, है ना, मतलब डेट भी आगे आगे जा रही थी लेकिन फाइनली आपको देखने वाली है ये फिल्म 26 अगस्त को आपके नजदीकी सिनेमा।

गाना नाइट सैंड, कैसे चल रही है आपकी सैटरडे की नाइट। मैं यही कह रहा था कि यार बॉलीवुड के दीवानों के लिए आज एक और बेहद खूबसूरत और गर्व का दिन है। सुभाष घई के निर्देशन में बनी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित एक्शन ड्रामा फिल्म कर्मा की रिलीज को आज यानी 8 अगस्त को पूरे 40 साल हो चुके हैं। सुबह ही अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार साहब और नसरुद्दीन शाह के साथ शूटिंग के पुराने संस्मरण शेयर करते हुए इस मास्टर क्लास को याद किया है। दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए गाने का जादू आज भी उतना ही ताज़ा है। तो चलिए ये सब पुराने 90s के मेमोरी को याद करते हैं एंड सुनते हैं अगला ये गाना। कैसे चल रही है आपकी सैटरडे की नाइट, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। एंड कर्मा जो बहुत ही आइकॉनिक फिल्म थी यार, देखते ही देखते 40 साल कर्मा मूवी ने कंप्लीट कर रखे हैं। मतलब वक्त कितना जल्दी।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.